0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है।

0: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके
1: संचालक पूरन चौधरी
0: संपर्क नंबर 9840206697 9850231697 और 9804483697
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भर्ना खुल्यो।
4: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
5: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेन्ट संकायमा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु।
4: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
6: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
4: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
6: होप इंटरनेशनल एकेडमी गुणस्तरीय शिक्षा को भरपर्दो आधार।
4: थप जानकारी का लागि
6: संपर्क नंबर 081-551-462 98-580-24-462 98-580-20-645 ठेगाना होटल रोयल बांके को पूर्वतिर नेपालगंज बांके।
7: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
0: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
0: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
7: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथन जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
0: संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाली ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है किसी सारे फिल्म 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से
4: सोमवार और बीफे के दिन।
2: और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ
4: जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज से।

हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार कार्यक्रम चना जोर गरम सुनने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो सरताई प्यारा से कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आप लोगन के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी और पराब्दिक माँ जो सदा साथी रहा आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो साथी आज 2083 दुई महीना आज 25 गते है दिन आज सोमवार है महीना जेठ के रहे। तो साथी आप लोग जान जाओ जाए कि आज हर मेर के अवधि हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली सब मेर के आपका मूवी सुने के मिली। तो आप लोग नंबर में फटाफट जुटा जाए सुने के 84-15-122 के लिए नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आवाज़ें और जो आप लोगों का मैसेज करे का है तो 98-155-96-3-6 में मैसेज किया जी। कार्यक्रम कहाँ से चला था का आप लोगों का बताए थे आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगाहर्ज से जो चला था ये कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक रही कार्यक्रम चना जोर गरम जी में आपका जो आज के जो गायककार फिल्म यानी सिंगर के नाम फिल्म के नाम बताओ परी कौन फिल्म हो कौन सिंगर लोग गाना का गायन है तो उनका सही उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार भी दिया जाए। और पुरस्कार कहाँ से दिया जाए आप लोगों के माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है जहाँ नंबर 1 टेलर है जहाँ सब मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट धावरा सलवार सब मेर के कपड़ा सेत है वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो साथी पहला नंबर में गाना है सुनी सुनी अखिया में जुगनू चमक उठे जब से मिला तेरा प्यार कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना गए नहीं इसे। दो नंबर में गाना है मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता अगर तू नहीं आता अगर तू नहीं तूफा नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। खैर हाँ साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए सुनी सुनी अखिया में जुगनू चमक उठे कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ही गाना का गायन है ऐसे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ही गाना का गायन है तो सब सही उत्तर दिया जी। उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए तो ले चलित है हम पहले प्यारा से गाना धमाकेदार गाना है छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ जब से प्यार किया है तुमसे जान के हमरे लाले पड़ गए गोरे से हम काले पड़ गए कैसे गोरे से काले पड़ागा जो आदमी गोराहर राई घाम के जेठ के दोपहरी जेठ के महीना के घाम सबका काला तो काला रहे मैंने गोरे से काले पड़ गए। तो सुना जाइए धमाकेदार गाना आप लोगों का जो मन पसंद के गाना जो भी है उदी हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली तो आप फोन संपर्क से मोबाइल में मैसेज भेज के अपन गाना सुन सकाया थे। तो साथी हम चले थे पहले छोटा सा ब्रेक की तरफ

0: हाँ तो सरताई प्यारा से गाना सुनागा। खैर चंदा जी कौने जलम के बदला ले लिए ऐसा धमाकेदार गाना बजा दिन के हमका नचहीन परिगा। बाप रे बाप थके गन खीस काढ़ा तो तुम का कहा हमका नाचा नाचा तू तो देखत रह। हाँ तो दोस्त ही गाना रहा जब से प्यार किया है तुमसे जान के हमरे लाले पड़ गए गोरे से हम काले पड़ गए। खैर गाना भी बहुत अच्छा रहा है तो साथी नंबर में आ जाए सुना कैसी 415 से बैस के लाइन में नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970 81 415 से बैस के लाइन में आ जाए। देखी कौन का को कहाँ से उनका स्वागत करी। नमस्कार आपके नाम मोतीलाल जी थोड़ा जोर से बोलो ना तार आवाजे नहीं आओ थे का खाए नहीं हो का पहुड़े रहा ए। अच्छा भैंसी वैसी तो आएगी वहीं चर के है नहीं हटाए दी हो तो भैया दूध खवाई का बात। अच्छा तो कार्यक्रम शुरू से सुना था तो क्वेश्चन के उत्तर दियो। हाँ जैसे सुनी सुनी अखिया में जुगनू चमक उठी है एक गाना और एक है मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता दोनों का सही बताओ। फिल्म हो आई मिलन की रात। हाँ और गायकार। हाँ और दूसरा नंबर को
1: आप आए बाहर आए
0: गायककार को
1: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।
0: ठीक है नमस्कार।
1: हाय
0: चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार ले लियो। ठीक है हम गाना सुनाए देवे आपका ना। ठीक है मगर एक गान एक एक दो गाना के बाद में है ना एक दो गाना के बाद में है आपका गाना सुने मिली चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। हाँ ये म्यूजिक बाजा था यही से आप दीवाना हो गए है नहीं। हाँ लो ठीक है नमस्कार। हाँ साथी रहे हैं मोतीलाल यादव जी जय जी बाकी गांव नेपालगंज बाके से। तो साथी आप लोग भी आओ जी इसे नंबर में सुने कैसी 415 के लाइन में आओ जी। पहला नंबर में गाना है सुनी सुनी अखिया में जुगनू चमक उठे जब से मिले तेरा प्यार कौन फिल्म है कौन गायक लोग गाना गाए हैं। इसे दो नंबर में गाना है मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता कौन फिल्म है कौन गायक लोग गाना का गाए हैं। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए तो लेब हम चली थे फिर छोटा सा व्यापारी विज्ञापन। विज्ञापन के बाद में आप लोग सुना जी प्यारा से गाना मैसेज के द्वारा आएगा है गाना जो दूर से मैसेज भेजी नहीं सऊदी से कि मैसेज में लिख देने कि जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे कि पाँव जरे सैया पाँव। ठीक है गाना ओके बाद में और तमाम साथी लोगन के कमेंट है ये है तो रेडियो के साथ रहा जी।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: Beer Dental.
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
5: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
7: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबिनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बालरोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-220 र 98-41-586-979। 081-530-220 र 98-41-586-979।
8: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
9: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हो एक समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव रीढ़ टिहुनी पिराप झंझनाहट हो नस पिराप झमझमाव हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी निसंतानता गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन यूरो सर्जन जनरल कैंसर मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
9: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5131000।
11: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल माले जाए।
12: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
11: अच्छा मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है तो?
12: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
11: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जायत हैं कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
12: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-5537-17।
10: आज यार कहाँ भटकत हो?
11: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
10: परेशान हो कोई बात नहीं है। प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म केयर संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर केर आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
11: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
10: संपर्क नंबर है 98487-27916।

0: एफओ मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथे टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: toilet pony, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: हरेक अभिभावकको सपना हुन्छ आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन्, सुरक्षित वातावरणमा सिकुन् र उज्जवल भविष्य निर्माण गरून्।
3: त्यही सपना साकार पार्दै आएको छ नेपालगञ्ज 18 बाँकेमा अवस्थित एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था स्प्रिङडेल एकाडेमीले।
2: आधुनिक प्रविधि मैत्री कक्षा, अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट सिकाइ वातावरण, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप र अनुशासित शैक्षिक संस्कार स्प्रिङडेल एकाडेमीको विशेषता हो।
3: ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिएको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डले विद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणित गरिसकेको छ। यहाँ पढाइसँगै व्यवहारिक ज्ञान र आत्मविश्वास पनि सिक्न पाइन्छ।
2: नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 विज्ञान व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा भर्ना खुला गरिएको छ।
3: सिट सीमित भएकाले आजै आफ्नो भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षित वातावरण र उज्जवल भविष्यको भरोसा स्प्रिङडेल एकाडेमी।
2: ठेगाना नेपालगञ्ज 18 बाँके, सम्पर्क फोन नम्बर 98582973।
4: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
5: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
5: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कहके तह दिल हुआ जाए।
5: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
6: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करू
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है किसी सारे फिल्म 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से
4: सोमवार और बीफे के दिन।
2: और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरोमिया जी के साथ
5: जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से।

0: हाँ तो श्रोता ही प्यारा से गाना छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुना कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आवा जी। कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर ऑडियो वीडियो दोनों जाते हैं। ये कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाता है आप के प्रिय रेडियो किसी सार FM 94 MHz से चला था नेपालगंज वार्ड नंबर 12 बिलासपुर भाके से। हाँ तो साथी आज जो ये कार्यक्रम में कोई साथी फोन लाइन में आ चुके हैं, पहले उनका स्वागत कर ली। देखी को कहाँ से है।
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: आपके नाम।
1: अरे हमारा नाम तो गोमती प्रसाद वर्मा है मियाँ जी, अंजारे गांव जानकी टीम।
0: गोमती जी।
1: हाँ जी।
0: और बढ़िया है।
1: बहुत बढ़िया है साहब, पहले हम शर्मा के ऊपर पंखा चलाए
0: तो
1: सब खिड़की दरवाजा खोल।
0: तुम्हारे लोगन के तो जिंदगी है भैया।
1: तुम्हार जिंदगी ना ये बैठो ये एसी में ही है।
0: अरे तो एसी में यहाँ तो जवले रहा जी तवले रहा जी तक और बाहर के कमवा करे जी हो जब
1: तब आग उलती थी
0: तब आग उलेरी एसी के रू जोन लपट से लागत थे देही में तो भाई जब हाड़ा भर रही तना खेदी। हाँ तो गोमती जी जो गायककार फिल्म के नाम बताओ।
1: मिया जी ये सब हम न जान पाई
0: न जान पी हो।
1: हमें गाना सुना दे वही याद नम और ये दिल मुस्कुराया जो साथी कोई भूला याद आया।
0: अच्छा हुई आखिनम।
1: हाँ
0: और ये दिल मुस्कुराया।
1: हाँ
0: ये साथी पुराण हमार गोमती प्रसाद बहुत याद आया है।
1: याद आया
0: है नहीं।
1: और इसका हम खूब बहुत हेरा फेरा सब गाना पावा है। सबसे पहले FM परिवार का सुनी है।
0: हाँ
1: चंदा जी का, संध्या जी का, आपका
0: धन्यवाद,
1: पूरे संसार का,
0: पूरे विश्व संसार का है ना।
1: हाँ हमारे एक लौंडा बैठे रामदास मौर्या।
0: अच्छा रामदास।
1: हाँ
0: तो हमरो लौंडे हुए
1: असल में बसवा ले।
0: काते खून काटो लाले लाल है।
1: हाँ यह सुनाई भाई मियाँ जी
0: रामदासो का।
1: हाँ
0: तो गोमती है सो सार रामदास बैठे हैं, गोमती लगाए बाजा है रामदास हुआ बैठे हैं। आए
1: बैठे हैं
0: ठीक है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव से रहे गोमती प्रसाद वर्मा जी और तमाम दर्शक श्रोता लोग बैठे रेडियो सुनत हैं। तो इसे आवाज है नंबर माँ सुने कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी। गाना है सुनी सुनी अखिया में जुगनू चमक उठे जब से मिला तेरा प्यार। कौन फिल्म है कौन सिंगर लोगी गाना का गई नहीं। इसे 2 नंबर माँ है मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। कौन फिल्म है कौन गायक लोगी गाना का गई नहीं। दोनों का सही उत्तर दिया जाए उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी जो आप लोगन के माना जाना हुआ ज्योति टेलर सदर लाइन में है जहाँ कुशल कारीगर द्वारा नंबर 1 कपड़ा बनावत हैं। जहाँ लेडीज जेंट्स अड्डा पीस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार समेर। तो इससे हम चली थे पहले आप लोगन के समझ में तो छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जी गाना तुम तरम तरम दुनिया 1 लाख धर्म कोठे ऊपर लैला पुकारे सुन ले मेरे बलम चना जोर गरम। हाँ साथी गाना के बाद में हम आप फिर मिला जी।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्। तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE 550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE 550D

हाँ तो सरताई प्यारा से गाना सुनागा, चना जोर गरम बाबू में लाई मजेदार, चना जोर गरम। तो इसे हमरे हाथ में मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं लिखी ने सर्वप्रथम संचालक मियाँ जी, आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मस्त राम पाठक धम्बोजी खजुरा रोड जो पान की दुकान से ही लिखी ने, सबसे पहले मियाँ जी आपका आपके पूरे रेडियो परिवार का दिल से नमस्कार करी थे। रेडियो सुनने वाले जितने श्रोता हैं सब लोगों का भी नमस्कार करी थे, धन्यवाद है। तो कहीं ने हमका कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, मस्त राम पाठक कह के चिन्हे जाने वाले सब लोगों का सुनाव चाहते, धन्यवाद है। इसे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजी ने बिजनौर से मैसेज भेजी ने मुकेश कुमार बरनवाल जी, इन्हो कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके बोली आपके आवाज़ बहुत अच्छा लागत है मियाँ जी। का करी कोशिश करी थे कब नेपाल गंजई माता बागेश्वरी के मंदिर में दर्शन करी और मियाँ जी से मुलाकात करी, मगर समय काम छुट्टी नहीं देते। कहा थे जिंदगी में फुर्सत नहीं हर बसर को, काम से कुछ समय ऐसा निकालो मुकेश भरवाल जी, प्रेम कह लो राम से, तो समय निकाल के राम भगवान अल्लाह से भी प्रेम करा जाते। हम आप तो इंसान हैं, आप जब चाहो तब आ जाओ जी। तो कहने हमका मुकेश के चिन्हे जाने वाले सब लोगन का गाना सुना दिया जी, गाना तो नहीं लिखी नहीं है, ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी नहीं है। नीतू हेयर कटिंग सैलून खजुरा बाजार से जो मैसेज भेजी ने बिंदुश्री ठाकुर जी, लिखने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, कार्यक्रम के प्रशंसा करी ने, कहने बहुत अच्छा लागत है आपके कार्यक्रम। ऐसे दूसर मैसेज है पवना पान भंडार से मैसेज भेजी ने नान बाबू पवना जी, इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। ऐसे खजुरा से सुरेश सोनी जो मैसेज भेजी नहीं, मैसेज भेजे वाले साथी लोगन के यहाँ कहने की साथी हैं सुरेश के चिन्हे जाने वाले साथी हैं, कहने

0: कि हमका सुरेश के चिन्हे जाने ले जत्ते साथी सबका सुनाया जाए थे। इसे मुबारक हाँ जो सऊदी से मैसेज भेजी ने इन्हों कहने कि मियाँ जी नमस्कार, नेपाल के ठिकाना खजुरा गांव पालिका पाँच रजनवा माँ है घर माँ हमरे रेडियो बहुत प्यार प्रेम से सुनत है। हमरे पापा जो महमूद खां है, बेटा हसनैन खां है और घर परिवार माँ पूरे परिवार का घर परिवार का बीबी बच्चन का और साथी हैं जैसे बैदू खां हैं, गोमती हैं और कहने सुरेश हैं, तमाम साथी लोगन का सुना चाहिए। ऐसे दोसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं, ये मैसेज भेजे हैं घनश्याम पाठक जी पिपराहवा आठ भाग्य से लिखी ने कि मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है। इन्हों कहने हमका गाना सुना दिया जी, धर्म काटा फिल्म के गाना कहने सुना दिया जी, ए गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। ठीक है, धर्म काटा फिल्म के गाना हम कोशिश करबे घनश्याम पाठक जी। तो कहने हमका घनश्याम पाठक कह के चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनाओ चाहते, विशेष कह के अपने प्यारी प्यारी प्यारी श्रीमती जो है गायत्री देवी पाठक, उनका मियाँ जी आपका, चंदा बहनी के यहाँ संध्या बहनी का और रेडिया सुना ले जितने दर्शक श्रोता बिंद हैं सब लोगन का सुना चाहते, धन्यवाद है। ऐसे मैसेज आएगा, मैसेज भेजे वाले साथी हैं, ये मैसेज भेजे हैं लिखी है कि सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है। इनके ठिकाना है जयसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से अमर लाल सोनी जी। कहने कि अपसिक बजे वाला गाना कोई भी गाना सुना दिया जी, साथी हैं इनके साथी हैं, साथी यहाँ जैसे रघुनाथपुर के अशोक सोनी, कुड़वा के ओमकार नाथ सोनी, प्रेम लाल, आरती, पूजा, ज्योति, गीता, सीता, अंजनी और कहने विशेष कहके सुनाओ चाहते, राजकिशोर पांडे पोस्ट बलरामपुर गोंडा मारा आते हैं। इन्हों कहने गाना लिखी नहीं नीचे या सेट माँ गाना है, हुई आखिना में और दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया। इन्हों ये गाना के फरमाइश करी ने, ये गाना के फरमाइश गोमती वर्मा के भी है जो जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव के। तो इससे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं ये लिखी है विजय कुमार वर्मा जो शिवानी ग्रिल उद्योग जो बाबा कुट्टी इमला चौ पुल से, ये लिखी है मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है। साथी इनके हैं खेमराज सोनकर हैं पान वाले, ऐसे कहने कि अपने घर परिवार का चिन्हे जाने ले सब लोगन का सुनाओ चाहते है। तो ऐसे हाँ, तो साथी आप लोग भी नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में कोई आए गए हैं उनका पहले स्वागत कैली। नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, कहा है तुम्हारा नाम?
1: भादरा सिंह सिरपाली इसी गांव से।
0: भादरा सिंह सिरपाली
1: जी,
0: थाल मा भात किना राखे छौ, पेट छ तिम्रो खाली? भद्रा सिंह सिरपाली
1: आलीगढ़ जी, बता तू एक पन्ने आइले चना को साथ मा खाने।
0: तपे मेरो संगी साथी सीता खूब कुरा गरा, तपे पनि बहुत सच्चा पक्का मान छे छौ हैन?
1: त्यो मोबाइल खराब भइगयो त्यसको।
0: कसको?
1: धनेको।
0: हां
1: धनेको मोबाइल खराब भइगयो।
0: तपे आफ्नो मोबाइल सीता कुरा गराउनु भएन त?
1: मलाई त अटो बुक गरेर जानु पर्छ, अटो बुकको पैसा कसले दिन्छ?
0: ए त ठीक छ, सजाए खुब मिली तुमसे दोस्ती लगाने से। ल भद्रा जी, कार्यक्रममा त्यो क्वेसनको उत्तर दिनु।
1: क्वेसन त मोतीलाल यादवले दिइसक्नु भएको छ नि।
0: हाँ
1: मोतीलाल यादवले उत्तर दिइसक्नु भएको छ।
0: ए ठिक छ, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी भद्रा सिंह सिरपाली रहा इसी गाँव जो खजुरा गांव पालिका से, साथी आ जाए नंबर में सुन 81-415-122 के लाइन में। और आप लोगन का अगर मैसेज के द्वारा उदी हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली अगर सुने का अपने मन इच्छुक गीत संगीत सुने का है तो 98-55-96-36 में फोन किया जाए, डायरेक्ट हमरे मैसेज पठवा जी, हमरे मोबाइल में हमरे फोन में आई आपके मैसेज, मैसेज का हम जैसे भी अगर ना पढ़ पावा तो मैसेज का रख के रहब, अगले अगले कार्यक्रम में भी उका रख पढ़ब, मगर मैसेज आप लोग भेजते रहा जी। और हमरे जो कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है, जहाँ कुशल कारीगर द्वारा जो तमाम मेर के कपड़ा सियाँ बनाया जाता है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। तो इसे संगम टेलर से मैसेज भेजे नहीं, लेकिन हवाएं चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, कृष्णा परियार ने लिखा है, हवाएं चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं। तो हवा चले तो पत्ता ना टूटी आए चंदा जी, हवा नहीं चलता तो हूँ टूट जाते हैं न। तो कहने हवाएं चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, नए यार मिलते हैं मियाँ जी क्या पुराने छूट जाते हैं। ना ही बात आपके हम मनबे ना करबे, चाहे जैसे भी कहा जी कृष्णा जी, जैसे ताल में पानी वैसे पूरे देशवासी हिंदू मुसलमान का हम सबका जानी। हाँ दोस्त, पत्ता तो पत्ता है मगर हमार दोस्ती बहुत पक्का है। तो ये कहने कि हमका भी गाना अपने मन पसंद के कोई सुना दिया जी। साथी हैं जैसे सुभाष परियार हैं, उनके पापा हैं, सुभाष के घर परिवार बीवी बच्चे हैं, और विशेष करके मोहम्मद अफरोज खान का सुना चाहिए नहीं। तो ठीक है साथी, आप लोग नंबर में जुड़े रहा जी 0815 1122 के लाइन में। और हम चली थे पहले व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में सुना जी प्यारा से गाना, हुई आखिना में और दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया।
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना,
3: फेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल फेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98480213।
4: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारो भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
5: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जात है। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़ती स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
4: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ हैं, शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
5: जानकारी रहक चाहे कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: Toilet Bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दै छ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
3: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
2: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
3: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
2: कस्तो खबर?
3: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
2: ए, साँच्चै?
3: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
2: ए, त्यो त झन् राम्रो
3: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य एमबिबिएस, एमडी केयु, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सुरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
2: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
3: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
2: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
3: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
2: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
4: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
5: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला? म त साह्रै चिन्तामा पो छु।
6: ह्यात तेरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज बाह्र बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
5: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
6: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
5: अनि सुरक्षाको कुरा नि, अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
6: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानी छ नि।
5: अनि शुल्क?
6: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
7: हाम्रा विशेषताहरू:
6: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
5: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
6: खेलकुदमा विशेष जोड,
5: शान्त र बालमैत्री वातावरण,
6: सिसिटिभी जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
5: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
6: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज बाह्र बेलासपुर। सम्पर्क नम्बर 081-537-505।
8: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
3: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो? पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैली चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
8: ए, अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
3: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
8: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
3: कांति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज। सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।
8: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते,
3: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
8: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
8: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
9: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै सहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु नै साँचो आत्मविश्वास हो। त्यसैले त नेपाल परिवार नियोजन संघ बाँके शाखा विगत लामो समयदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित छ।
2: हामी कहाँ पूर्ण गोपनीयताका साथ सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजनका साधन, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको परीक्षण तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध छन्।
1: विशेष सुविधा अब प्रत्येक आइतबार दिउँसो 3-5 बजेसम्म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्देश आचार्यद्वारा विशेष परामर्श र उपचार पनि पाउनुहुनेछ।
2: ढिला नगर्नुहोस्, आजै स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिनुहोस्। ठेगाना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 रामलीला रोड नापी शाखा अगाडि।
1: फोन नम्बर 081-530-398।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
5: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।
6: हाँ तो सरताप का क्या जाए, एकदम कार्यक्रम के एकदम अंत अंत में। हाँ तो साथी, आप फोन भी ना ले मिली, आपके मैसेज भी ना पढ़ मिली, आवाज़ के जो क्वेश्चन है, सिंगर के फिल्म के नाम पता कोई सही नहीं बता पावा है। अगले सोमवार के कार्यक्रम में यहाँ रखा जाए। तो साथी, आप लोग जो फ़ोन किया गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दी थे। आप लोग मैसेज पठवागा, आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद दी थे। आई कार्यक्रम में जो आप लोग एकदम ऑडियो वीडियो दोनों सुना देखा जाते हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर लाइक शेयर कमेंट जरूर करते राजी। आई कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने विशेष साथी जो हमारे जिगरी साथी जो हमारे सामने बैठे हुए संदा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कहे से कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो एकदम दिल मन लगाए कि पूरे विश्व में पठवत हैं, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद देते। प्यारा से गाना जो है आप लोगों के समझ में, क्वेश्चन के गाना जो रखा रहा है, वो गाना आप लोग सुना जाए। मुझे तेरी मोहब्बत की सहारा मिल गया होता, ये गाना के साथ में हम संचालक मियाँ जी साथे में, हम संचालक मियाँ जी और साथे हमरे प्रादी माँ चंदा जी दोनों जने विदा लिया जाते। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा

0: बद्ध होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे का है, कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037। नींद न आए हमको हाय
1: जग सोना है। व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए, करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए, करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सरसलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए, करावा जाए।
1: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए, करावा जाए।
2: तब आवश्यक सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9814483697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर, इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल
4: पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज तीनकुने काठमाडौँ।
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
5: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
6: Back to back. Back to back.
7: In this song on.
6: Stay tuned.

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: खुल्यो
2: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
1: स्टाइल पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
2: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि साथमा फाइनान्स को सुविधा पनि।
1: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँकी।
2: हजुर नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा।

0: Teleponia. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूपमा करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी ओ सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते। मैं हूं सारा अली खान
0: और मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै सहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला? म त साह्रै चिन्तामा पो छु।
0: हेतरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज 12 बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
2: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
0: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
2: अनि सुरक्षाको कुरा नि? अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
0: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानी छ नि।
2: अनि शुल्क?
0: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
3: हाम्रा विशेषताहरू:
0: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
2: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
0: खेलकुदमा विशेष जोड,
2: शान्त र बालमैत्री वातावरण,
0: सिसिटिभी जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
2: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
0: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज 12 बेलासपुर। सम्पर्क नम्बर 081537505।
4: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
5: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
4: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
5: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
4: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है, घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
5: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
4: काहे न बनाए दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
5: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
4: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
6: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
5: हाँ दीदिया,
7: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680073 70 और 98195067 67 82।
8: यो कृष्ण सार FM
9: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी